आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग अहिर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं पंडित तुषार दत्तो. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुमंत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी. तो आइए सुनते हैं राग अहिर भैरव में ख्याल, कलाकार पंडित तुषार दत्तो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग अहिर भैरव बाय आवर आर्टिस्ट पंडित तुषार दत्ता. He is accompanied on the tabla by Sumanta Chattopadhyay and on the harmonium by Devashish Adhikari. Now, listen to a khayal rendition in Rag Ahir Bhairab by our artist Pandit Tushar Dutta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित तुषार दत्तो। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुमंत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है सितार पर राग अहीर भैरव, कलाकार अंजन साहा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल रेंडिशन इन राग अहीर भैरव by our artist Pandit Tushar Datta. He was accompanied on the tabla by Sumant Chattopadhyay and on the harmonium by Devashish Adhikari. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a sitar recital of Rag Ahir Bhairab by our next artist Anjan Saha. The accompanying artist is Tarun Roy on the tabla. Now, listen to a sitar recital of Rag Ahir Bhairab by our artist Anjan Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल ऑफ राग आहिर भैरव by our artist Anjan Saha. Accompanying artist was Tarun Roy on the tabla. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विनायक वोरा का तार शहनाई वादन. उन्होंने तार शहनाई पर बजाया ये है राग मारुबिहाग. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित सुरेश तळवलकर. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट तार शहनाई रिसाइटल बाय विनायक वोरा. ही प्रेजेंट्स राग मारुबिहाग. विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल. ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित सुरेश तळवलकर.

ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये था राग मारुबिहाग। अपना तार शहनाई वादन जारी रखते हुए विनायक वोरा अब प्रस्तुत करते हैं राग रागेश्री। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं दिलशाद अहमद। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। That was Raag Marubihag. Continuing his Tar Shehnai recital, Vinayak Vora now presents Raag Rageshri. Vilambit Gat set to Ek Taal and Drut Gat set to Teen Taal. He is accompanied on tabla by Dilshad Ahmed.

ये था राग रागेश्री। आप सुन रहे थे विनायक वोरा का तार शहनाई वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे दिलशाद अहमद। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग रागेश्री। यू आर लिसनिंग टू तार शहनाई रिसाइटल बाय विनायक वोरा। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय दिलशाद अहमद। This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग भैरव. आलाप के बाद आप सुनेंगे विलंबित और द्रुत गतें जो कि तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a sarod recital by Mukesh Sharma. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak. Mukesh Sharma first presents Rag Bhairav, in which he will first play alap, followed by drut gat set to teen taal.

0: अभी आप मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग परमेश्वरी में आलाप मध्यलय और द्रुतगत की बंदिश जो कि तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग भैरव प्लेड ऑन द सरोद बाय मुकेश शर्मा। Concluding his sarod recital, he now presents Rag Parmeshwari, in which you will hear the alap followed by Madhyalay and Rudgat set to Teen Taal.

0: अभी आप मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग परमेश्वरी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग परमेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय मुकेश शर्मा। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: सुनिए विदुषी शोभा गुर्टू का उपशास्त्रीय गायन प्रस्तुत है ठुमरी बोल है साजन मेरा छोड़ गया तबले पर संगत किया है महादेव इंदोरकर ने सारंगी पर जेपी खान और हारमोनियम पर बाबूराव नेजकर
2: Listen to Hindustani light classical vocal by Vidushi Shobha Gurtu. First, we will listen to Thumri. Bol, Sajan Mera Chhod Gaya. Accompanying her on tabla is Mahadev Indorkar. On sarangi, J.P. Khan. And on harmonium, Baburao Neskar.

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गुर्टो की गाई ठुमरी। अब सुनते हैं माज खमाज ठुमरी, बोल हैं अब कैसे धरू धीर।
1: Now we will listen to मांझ खमाज ठुमरी, बोल अब कैसे धरू धीर।

0: अब सुनिए विदुषी शोभा गुर्टू का गाया दादरा। बोल है बिंदिया ले गई हमार मछलिया।
1: दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल बाय विदुषी शोभा गुर्टू। Accompanying her on tabla was D.R. Nerurkar. On sarangi was Anant Kunte, and on harmonium was Arvind Tsafalkar. Continuing with the concert, listen to Vidushi Shobha Gurtu presenting Dadra. Bol, Bindiya le gayi hamar machliya.

0: ये था दादरा। विदुषी शोभा गुर्टू की गाई भैरवी ठुमरी सुनिए, बोल हैं बहुत दिन बीते सैया नहीं आए।
1: That was दादरा। Now listen to भैरवी ठुमरी by विदुषी शोभा गुर्टू। बोल बहुत दिन बीते सैया नहीं आए।

ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है, सुनते रहिए हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन राग किरवानी. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित शुभंकर बंदोपाध्याय. राग किरवानी संतूर पर कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग We present a Hindustani instrumental recital. Listen to a Santoor recital in Raag Kirwani. Our artist this evening, Pandit Tarun Bhattacharya. Accompanying on the tabla, Pandit Shubhankar Bandhabadhyay. Now, listen to a Santoor recital in Raag Kirwani by Pandit Tarun Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग किरवानी में पंडित तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन सुन रहे थे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित शुभंकर बंद्योपाध्याय। ये है रागम 24 घंटे 7 दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a santoor recital in Rag Kirwani by Pandit Tarun Bhattacharya. Accompanying on the tabla, Pandit Shubhankar Bandyopadhyay. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

ಚಿಂತೆಯೇ ಅಮೃತೇ ಸರಿ ವರ್ಷಯ ವರ್ಷಯ ವರ್ಷ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा. आप सबसे पहले राग गौर सारंग में मध्य लय में ख्याल बजाएंगे जो कि तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मुन्ने खां.

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा पर राग गौर सारंग। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया विचित्र वीणा पर राग श्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मुन्ने खान। आप मध्यलय बंदिश बजाएंगे जो कि तीन ताल पर निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा पर राग श्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुन्ने खां। आइए अब प्रस्तुत है अरविंद पारिक का बजाया सितार वादन। आप सबसे पहले राग हंस ध्वनि प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद अहमद।

अभी आप सुन रहे थे पंडित अरविंद पारिक का बजाया सितार पर राग हंस ध्वनि। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मोहम्मद अहमद। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सितार पर राग गुंजी कौस। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद अहमद।

रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अरविंद पारिक का बजाया सितार पर राग गुंजी कौस। आइए अब सुनते हैं माबूद हुसैन का क्लार्नेट वादन। आप सबसे पहले भैरवी में ठुमरी प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात भैरवी में दादरा प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद पीलू में ठुमरी, पहाड़ी धुन तथा पंजाबी धुन प्रस्तुत करेंगे। आइए सुनते हैं माबूद हुसैन का क्लार्नेट वादन।

अभी आप सुन रहे थे माबूद हुसैन का क्लारिनेट वादन। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ध्रुपद गायन. कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. राग है भैरव. इसमें आप सुनेंगे आलाप, जोड़ और एक रचना जो चौताल में निबद्ध है. बंदिश के बोल हैं विष्णु चरण जल ब्रह्म कमंडल. संगत कलाकार हैं पखावज पर पन्ना लाल उपाध्याय. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1979 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग भैरव. The accompaniment has been provided by Panna Lal Upadhyay on the Pakhavaj. This was recorded in the year 1979.

अब आप सुनेंगे राग रामकली में धमार, बोल हैं एरी आली भाई भोर, कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. नाउ लिसन टू अ धमार रेंडिशन इन द राग रामकली बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर.

आप सुन रहे हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गायन। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे

विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गाया राग खमाज में आलाप जोड़ और एक रचना जो चौताल में निबद्ध है। बंदिश के बोल हैं मायरी बरजो न मानत। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग खमाज।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गायन। संगत कलाकार थे पखावज पर पन्ना लाल उपाध्याय। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। द कंप्लीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पन्ना लाल उपाध्याय ऑन द पखावज। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव. विलंबित गत तीन ताल में और मध्य लयगत झप ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Satish Prakash Kamar in Rag Bhairav. The Vilambit Gat is said to Teen Tal and Madhyale Gat is said to Jhap Tal. He is accompanied by Ustad Fayyaz Khan on Tabla.

0: अभी आप सतीश प्रकाश कंवर का शहनाई पर बजाया राग भैरव सुन रही थी। और लीजिए अब सुनिए राग मदमात सारंग। मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग भैरव बाय सतीश प्रकाश कंवर। नाउ लिसन टू राग मदमात सारंग। द मध्यलय गत एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग मधमाद सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद फैयाज खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मधमाद सारंग। ही वाज अकंपनीड बाय उस्ताद फैयाज खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना। संगीतकार है राम कदम।
1: जय जय।

0: श्रोताओं,
1: आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावड़ीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओं, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।

विट्ठल शिंदे के स्वर में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए निरोबा राय की रचना माणिक वर्मा के स्वर में।

माणिक वर्मा के स्वर में अभी आपने सुनी निळोबा राय की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DDH चैनल पर। कार्यक्रम में अब सुनाते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे राम फाटक के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वामी स्वरूपानंद की रचना शंकर घाणेकर के स्वर में।